धयुन तुबिडावी अमरामा दाई थाय आती दाई भाए तिसनीने ना हेनिन ए नने ना इम्बल इब्निम सियोदे ना तू न हिनिम बरेक न निसरिवे तुक न कस्तु दाई बदाइन दाई थाय आती बदाइन तीम दाई थाय आती व मिड्डा व अफरहा या मरा गुआयोक ना व तिंदुआते ओक ना व दाई थाय आती बदाई मियादी इम्बल इब्ने दोक ना अमसे अरे हेनिन दिवनु आथे कम तो अमसाल इम्बरे ओ हद्दीदा नेत तुबिडावी अफामा धायो आको।

धयुन तुबिडावी अमरामा दाई थाय आती दाई भाए तिसनीने ना हेनिन एनने ना इम्बल इब्निम सियोदे ना तू न हिनिम बरेक न निसरिवे तुक न कस्तु दाई बदाइन दाई थाय आती बदाइन तीम दाई थाय आती हुआ मिड्डा हुआ असरहा या हमारा गुआयो कना हुआ तिंदुआते ओकना हुआ दाई थाय आती बदाय मियादिब इम्बल इब्ने दोकना हमसे अरे हेनिन दिबनु आते कम तो हम साल इम्बरे हो हद्दी दानियत तुबड़ावी अफाम अधायो आको।